आपको खून की सगवाई या ईशा ने एक अश्ली हिस्सन की आज एक थी बताते थी कि खलोशे एक लगा ने कह चुको या इन हिलनाश ने तोले माय नेम इज डार्नेल जे मरिया I'm looking over the 638 programs within the Raymond Avenue chapter.

आज ए ना खिकन आज बिटी टेस्ट इंगे आज शिंत ए हता पिच ना निस्टोलिस पब्लिक सेफ्टी हैजर्ड जो तोशिं आज ए हता स्टो इंस्टाग्राम नी स्टो पाच ना हॉट अंदा नीला ए आज तो यूशिं चनी ए हितन स्ना हशित आई हिस्तान आदो आयु सच तो हट ए गोता आज ईया स्ट्रे खता हत्सी को आज अता नील तो नीला आदो सही आप बेबत आंदो ईया बेना गीत ईयां देश ए ए दहुस आगो कुत आ ईया बेना होत ई गीत ईया बनीना आज अल्ट्रा हस आज दात ए कुत आ दी दा अल्ट्रा ए आज ईया तो चोस चिता योस इन द तो लिस तो ता ईया आज खुद आ यिन यहत इल्ला गुता ए नत आ ईया नताल खा तो लिस ए आज अम्मता जैता ईया पेबिता हन्ने तो लिस ए खुद आ दाज ए स्तो बीगता चनीला साशी आज खुद आ बित ए ता ईया खुद आ